प्याला 10 रुपये माली माल मिलेगा तो भी गोल्डन कलर का माल मिलेगा 10 से 10 देखने वाले का नजर खराब हो जाएगा सर जी 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये बोलो जी बोलो।

0: हासिल भाई।
1: आप इधर चले
0: चले चले इधर चले भाई। 21 के अंदर दिया जरा भाई।
2: एक का चार